आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 303। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 6। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30 पर।

सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11 बजे विविधा के अंतर्गत केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, मुकरी आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका पर। 12 बजे यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे

domini. पर 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम, 3:00 मन चाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग, 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए आंख की किरकिरी भाग दो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार और निर्देशक हैं नंदलाल शर्मा। शाम 4:00 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला होगा शाम 7:00 से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर साज और आवाज, हवा महल में रात 8:00 सुनिए प्रहसन मलाई वाला दही, मूल कन्नड़ लेखक M. गोविंद, निर्देशन पुरुषोत्तम दारभेकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। रात 10:00 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 सुने विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 303।

लंका में श्री राम के वानाडीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आज आपने सुना भाग 303।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं।
2: इस किराना घराने की जो खासियत है
1: जी,
2: ये सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है। आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस घराने में कैसे
1: मिंड का प्रयोग। वाह वाह।
2: मिंड आप जानते हैं, एक स्वर से दूसरे पर स्वर पर जाते हुए उसका जो बीच में विदाउट एनी गैप

0: जी,
1: ऐसा जो
0: एक सुर से दूसरे सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी,
1: निरंतरता, उसकी जो मेलोडी जो है
0: उसे मिंड कहते हैं।
1: वाह।

0: गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और सरल सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं।
1: जी,
0: श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मीन के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है।
1: जी जी,
0: इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार
1: अच्छा
0: आता है। विलंबित लय में मीन का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मिंड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आता आ जाता है।
1: जी,
0: सुंदर मिंड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मींड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है।
1: जी,
0: मेरे गुरुजी
1: जी
0: विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मींड गायकी तो उनकी खासियत थी।
1: अच्छा,
0: जिन रागों में मींड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा,
1: अच्छा
0: रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
1: जी।
0: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी, गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए
1: जी, जी। हाँ?
0: और टॉन्सिल्स के वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी।
1: ओ।
0: बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी
1: अच्छा
0: आवाज हो गई, वजन खरज
1: अच्छा,
0: वाली आवाज अच्छा। और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया अच्छा। लोगों को पसंद हुआ और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया। और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है
1: अच्छा।
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही गाती थी।

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है वो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरो आरो

0: आईएन पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 trillion मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
6: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं।

0: पटना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। 1 दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary

0: শ্রীকান্ত আচার্যর কণ্ঠে শুনলেন আধুনিক গান আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে। এরপর বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে মুম্বাই কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को परास्त कर दिया गया है, आत्मविश्वास से भरे सशस्त्र बल दुश्मनों के घरों तक प्रहार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व उत्तर तक शांति बहाल हो गई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे थे। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 23 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है।

जावेद अली सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद संगीतकार थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य तरंग में यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले। सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं गोल्ड फिल्म का गीत। यासीर देसाई की आवाज है, गीतकार हैं अर्को प्रभो मुखर्जी, संगीतकार भी हैं अर्को प्रभो मुखर्जी।

0: यासिर देसाई की आवाज में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे आर्को प्रभु मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज में। समीर के बोल थे आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल्स सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा इन विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलंकोली बेब डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरी ना ओ आई था बिहुरेनो बिरी ना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रेवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूलेछि निजेर घर, घरी भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से तो रूपांतर किए थे, याजाबर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा
0: जी,
1: हाँ आवारा हूँ।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा
1: जी बिल्कुल। और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर,
0: हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविध

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये विविध भारती है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।

0: और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनके सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: সম্প্রচারিত হলো দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।

0: শুনছিলেন নজরুল গীতি শিল্পী মোহাম্মদ রফির কণ্ঠে। এবারে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এর অবহিত পরে শুনবেন বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান মুম্বাই কেন্দ্রের।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নিখিল কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश से प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। श्री शाह ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल सऊदी अरब की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉक्टर तारिक अल हमद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंगलवार तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंह मानव संसाधन, कौशल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नवाचार को गति देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग आवश्यक है कि वैज्ञानिक अनुसंधान बाजार तक पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिले। कोलकाता में आज 2 दिवसीय राइस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

0: डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कई रणनीतिक वैज्ञानिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए खोल दिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ये मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ की स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जिले में मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी वर्षा जारी है। नई दिल्ली के मोती बाग इलाके में एक इमारत के गिरने की खबर है। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
2: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on equal area world map. Spokesperson of Ministry of External Affairs Randeep Jaiswal said that India has voted in favor of the United Nations General Assembly resolution on equal area cartographic representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. He also clarified that any inaccurate or misleading depiction is unacceptable. He said the government's position on India's sovereignty and territorial integrity is clear, consistent and non-negotiable. 10 people have been confirmed dead after allegedly drinking suspected spurious and illegal liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Sagar collector Pratibha Pal confirmed the deaths. Around 35

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

ये जो रात का रोशन चांद है ना, इसने ना जाने कितनी मोहब्बतों को जन्म लेते देखा है, कितनी ही आंखों में सपने सजाए हैं, कितनी ही दुआओं को अपने उजाले में पनाह दी है। वो जानता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है, और चांदनी वही खामोशी है जो दिल से दिल तक बिना आवाज पहुंच जाया करती है।

इंतकाल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है तो कभी किसी की याद का, कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

चांद की तरह है। वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खाम

मुंशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है, पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है लेकिन मिटता कभी नहीं।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

जाने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आशा भोसले के गाए कहो ना प्यार है फिल्म के इस गाने के साथ।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आसुक जरा कमलापति थुंगनु खाकनि बखा खनारजाखा थुंगनुनो सैनेंखा हरिदास देव बर्मा तै आरो मसानाय रकंखा दनपति

ती सदाग राजा हंके फुलिंद्र जमातिया इसरी हिंगे आंदोलन देव बर्मा सामपारी हिंगे शम्भुलक्षी देव बर्मा कमलापति इंखा शांतिबाला देव बर्मा ते माजी इंखा मलिन देव बर्मा ते कथमा सविखनारायण इंखा नित्यानंद देव बर्मा तब खनारे जगह रेसा मूंग रेसा मूंग खरंग रवान साधना रिया